श्रोताओं सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद

0: बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ध्वनि तरंगों की लय पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगल प्रभात की करते हैं शुरुआत मातृभूमि के नमन से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

ओम व्यास के सुर में अभी आपने सुना ये भजन। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब करते हैं विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन में। आज के चिंतन में आलेख और वाचन केशरी चंद परख का है।

एक युवक ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। एक व्यापारी ने शेयर के धंधे में भारी नुकसान होने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक पत्नी ने ससुराल पक्ष व पति से अनबन होने के कारण अग्नि स्नान कर अपने जीवन का अंत कर लिया। एक पुत्र ने पिता की सही समझदारी वालों को बातों को स्वीकार न कर अलग होने का विचार बना लिया। एक छात्र ने परीक्षा में असफल होने के कारण नदी में छलांग लगा ली। एक उच्च ऑफिसर ने घोटाला किया और उसका पर्दाफाश होने पर नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खाकर चिर निद्रा में लीन हो गए। एक युगल प्रेमी ने विवाह की स्वीकृति न मिलने पर घर से पलायन कर लिया। आए दिन इस तरह की खबरें हमें पढ़ने सुनने को प्रतिदिन मिलती रहती है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यदि हम चिंतन करके देखें तो पाएंगे कि वे सभी हीन भावना के शिकार हुए। वे इस विषय में चिंतन नहीं कर पाए, जीवन से हताश हो गए और न करने वाले अशोभनीय कृत्य कर बैठे। उनकी इस स्थिति में सही विचार करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। हीन भावना उनमें हताशा, मानसिक दुर्बलता को जन्म देती है और उससे मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत प्रभावित होती है। वे सही निर्णय नहीं कर पाते और जल्दबाजी में उल्टे मार्ग पर बढ़ जाते हैं। कैसे उबरें हीन भावना से? हीन भावना से उबरने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करने का। दूसरा, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। और तीसरा, प्रभु के प्रति श्रद्धा, विश्वास जागृत करना। जब तक हमारा आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, हम सकारात्मक सोच नहीं कर पा सकेंगे और उसके बिना प्रभु के प्रति श्रद्धा भी जागृत नहीं होगी। प्रभु के नाम स्मरण का बहुत महत्व है, उससे हमारा आत्मविश्वास दृढ़ बनेगा और जो हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों की प्रस्फुटति करेगा। इस प्रयास से हम हीन भावना से उबरकर अपनी जीवन नैया को सही दिशा में ले जाने में अवश्य सफल होंगे। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसमें कमी न हो। हो सकता है एक बार में सफलता न भी मिले, मगर प्रयास करते रहिए, वह नकारात्मक सोच मत बनाइए। सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी, इतिहास साक्षी है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में भटककर कितने कष्ट उठाए, मगर मन में हीन भावना न आने दी और पुरुषार्थ कर विजय प्राप्त की। जॉर्ज मूलर एक अनाथ आश्रम का संचालन करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों अनाथ बच्चे रहते थे। बड़ी धनाभाव के कारण बड़ी मुश्किल से वे अनाथ आश्रम को चला पा रहे थे। एक बार आश्रम के मैनेजर ने आकर उनसे कहा, आज तो रसोई बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, सब हो जाएगा। 10 बजे आकर पुनः का भोजन का समय हो गया है, क्या करूं? उन्होंने कहा, घंटी बजा दो, सब बच्चों को बिठा दो, व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा ही किया, सभी बच्चे आकर बैठ गए। इतने में आश्रम के दरवाजे पर 2 कारें आकर रुकी और ढेर सारा खाने का सामान लाकर मैनेजर को दिया। मैनेजर आश्चर्यचकित रह गया। आने वाले सज्जनों ने बताया, उनके यहाँ आज प्रीति भोज था जो किसी कारणवश स्थगित हो गया, तो हमें अचानक ही जॉर्ज मूलर की यह ख्याल आया और यह खाना यहाँ के बच्चों के लिए लाए हैं। जॉर्ज मूलर इतनी विषम परिस्थिति में भी हताश न हुए और न हीन भावना लाए। एक व्यक्ति का एक पांव कट गया दुर्घटना में। वह हीन भावना में जीने लगा और भगवान को कोसता रहता था। एक बार वह एक इमारत में लिफ्ट में जा रहा था तो देखा कि उसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसके दोनों पांव नहीं थे, फिर भी वह मस्ती में गुनगुना रहा था और भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। उसको देखकर एक पांव वाला व्यक्ति भी सीख पा गया कि हर परिस्थिति में मैं मस्त रहूं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में भी इस युग में एक जैन साध्वी ने परवाह नहीं की और तन में व्याधि मगर मन में समाधि का उदाहरण जनता के सामने रखा। हीन भावना से उबरने के माइलस्टोन, हमेशा परमात्मा के नाम का स्मरण रखें, अपनी आत्मा के मूल रूप का ध्यान रखें, कुछ देर शाब्दिक व वैचारिक मौन, मन में सभी के प्रति मैत्री भाव, गुस्से से बचें और सदैव प्रसन्न रहें।

केशरी चंद परख का आलेख अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर सुरेश वाडेकर का है, संगीत संयोजन है।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था सुरेश वाडेकर का। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारी इस सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही देर पश्चात यानी सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। 7:20 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा सुबह 8:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे सुबह 8:15 से। सुबह 8:30 का समय होगा कार्यक्रम सबरंग का। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से। सुबह 10:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 10:05 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा सुबह 10:30। सुबह 11:00 से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 2:15 का समय होगा दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को पुनः आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम 5:00। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 5:30 से। शाम 6:00 का समय होगा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का। सुगम संगीत के कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 6:30 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। और 7:10 का समय होगा भोपाल केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार का। कार्यक्रम चौपाल के साथ हमारे किसान भाइयों के दरवाजे पर हम दस्तक देंगे शाम 7:21 पर। और 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:00 से। 8:30 का समय होगा कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का।

विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे रात 9 बजे से। 9:15 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले स्पॉटलाइट समाचार। रात 9:30 से रात 11 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। 10:30 से रात 11 बजे तक आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इसी के साथ अब कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब चलते हैं सिने जगत के गुजरे दौर में और सुनते हैं चंद सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, स्वर किशोर कुमार आशा भोसले का है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए। रचना योगेश की है, जिसे संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

आशा भोसले के स्वर में कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए दो बदन फिल्म से। शकील बदायूनी की शब्द रचना है और संगीत है रवि का।

किशोर कुमार के गाए राजपूत फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 बस होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों को चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और

जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार

0: होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्पिन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
2: नमस्कार बालाघाट।

खूबसूरत सी इस प्यारी सी सुबह को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का ये ताज़ा तरीन अंक। और आज के अंक में आपकी हम सफ़र होगी, मैं आपकी रेडियो दोस्त संगीता। तो कार्यक्रम में सबसे पहले स्वीकारें हमारा नमस्कार और सुप्रभात। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? गर्मियों के मज़े ले रहे हैं और साथ ही मौसम खेल रहा है आँख मिचोली, कभी गर्मी, कभी ढके बादल, कभी बारिश की फुहारें। और इस मौसम के साथ ही आप भी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं, क्यों ना इस बात पे चर्चा की जाए। क्योंकि साथियों, जीवन में हम हंसने का बहाना ढूंढते हैं, सरल नहीं है हंसी। जैसे पीड़ा में, दुख में सहज ही आंखें बरस जाती हैं, उसी तरह का सहज भाव है हंसी। इसे यूं ही आना चाहिए सरलता से, लेकिन फिर भी हमें हंसने के बहाने खोजने पड़ते हैं। पर अगर थोड़ा सा नज़रिया बदल कर देखें तो हंसी बस यूं ही मिल जाती है, जैसे शिशु की मुस्कान में। नन्हा बच्चा मुस्कुराता है तो उसे देखकर कोई भी बिना हंसे रह नहीं सकता। जो बोल भी नहीं सकता, कुछ जानता नहीं, पहचानता भी नहीं, वो तक सरल हंसी से परिचित है। यूं तो हंसी का पिटारा लिए खुशियाँ हर राह पर मिल सकती हैं। अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हंसने के कई बहाने हैं। कभी आसपास देखें तो कोई नन्हा बालक अपनी हरकतों से हमें हंसने पर मजबूर कर देता है। तो कई बच्चे ऐसी ऐसे कारनामे करते हैं कि उन्हें देखकर बस बरबस ही हंसी छूट जाती है। साथियों, किसी और के रंग में ढलकर, किसी किरदार का बाना पहनकर हंसी तलाशना बड़ों की दुनिया में होता है। बच्चे तो बच्चे रहकर ही हंस लेते हैं और दिल से हंसते हैं। उस जैसी खिलखिलाहट को फिर सारी उम्र तराशते हैं हम बड़े होकर। क्या जाने क्या होता है कि सांस उस तरह से खुलकर हंसी का साथ नहीं दे पाती, आवाज़ भी एक तयशुदा हद से ऊपर नहीं उठती, या फिर शायद हम उठा नहीं पाते। मुंह कान तक फैले तो मुस्कान को दमदार माने। वैसे अगर हम देखें तो ये बारिश की जो बूंदें होती हैं वो भी हमारे चेहरे पर मुस्कान तो ले ही आती है, हल्की सी बयार भी। इन दिनों पेड़ नए पत्तों के जामे पहन रहे हैं, पुरानी सख्त पत्तियां जैसे नन्हे कोमल पत्तों को सिर ऊपर बिठाकर दुनिया दिखा रही हों। खुशियों भरा नज़ारा है ये भी, जैसे प्रकृति खिलकर मुस्कुराई हो। अब चिड़ियों को ही देख लीजिए। पहले हैरानी होती थी कि कोई पंछियों को देखने क्यों जाता होगा बर्ड वॉचिंग के लिए, खासकर वो लोग जो सैलानी हैं, विज्ञानी नहीं। उनके लिए प्रकृति के नज़ारे ज़्यादा मोहक होते होंगे। फिर एक दिन सिर पर ऊंचे बालों का ताज सा धारण किए एक चिड़िया को कांच से झांकते पाया। पहली बार किसी पंछी को इतना करीब से देखा। किसी इंसान की मौजूदगी से अनजान वो मजे से मुंडी मटकाती, क्या जाने अपनी छवि देखकर चहचहा रही थी या भीतर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे देखकर बरबस ही हंसी आ गई। गौरैयों का फुदकना, जोर जोर से आपस में बतियाना और गिलहरियों की पकड़म पकड़ाई खेलना अब यकायक ही नज़र आने लगा। दोस्तों, रंग, रोशनी और सुगंध मुस्कानों के हर कारे हैं। सुबह हो या शाम, रोशनी भर देती है। बादल हो या फूल, इनके नज़ारे सुख के रंग हैं। और जो खुशबू की तृप्ति वाली खुशी पानी हो तो ज़रा सा केसर हथेली पर रख लीजिए। मुस्कानों की क्यारियाँ, खुशियों के बगीचे और खिलखिलाते पलों की मौजूदगी नज़रों में रहे तो हंसी भी सहज भाव से आ ही जाएगी।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
3: अपने घर, दफ्तर,

0: कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
1: और ग्रीन एनर्जी पाएं
0: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
1: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
0: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आए ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 8770854830,
1: 7581938175।
2: श्रोता साथियों, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब है सीखना और ज्ञान प्राप्त करना। ये हमें बड़ी समस्याओं को हल करने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मदद करती है। मित्रों, शिक्षा हमारे चरित्र का पोषण करती है, हमें अनुशासन सिखाती है और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमारे सपनों को, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या डॉक्टर बनने का सपना हो, इन सपनों को साकार लक्ष्यों में बदलती है शिक्षा। शिक्षा मूल्यों का विकास करती है, हमारे दिमाग के बंद दरवाजे खोलती है और समाज में एकता को बढ़ावा देती है। और यही कहता है हमारा आज का विचार भी, जिसे हमने लिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कलम से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, शिक्षा वो रक्षक है जो सपनों को साकार में बदलती है। बिल्कुल सही बात है साथियों, शिक्षा वो अमूल्य कुंजी है और एक तरह से रक्षक भी है जो किसी भी साधारण सपने को हकीकत में बदल सकती है। और साधारण ही क्यों, बड़े से बड़े सपने को भी हकीकत में बदल सकती है। ये ज्ञान, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान करके व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। जिज्ञासा, रचनात्मकता और सीखने की प्रबल इच्छा को पोषित करना शिक्षा का काम है। श्रोता साथियों, छात्रों को जो बड़े बड़े सपने होते हैं, उन्हें देखने का और दृढ़ता और ईमानदारी के साथ उन सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है शिक्षा। तो शिक्षा को बढ़ावा दें और सभी को शिक्षित करें, इस बात की कोशिश आप भी ज़रूर करें।

0: श्रोता साथियों, देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन को कई कारणों से जाना जाता है। आज की तारीख में कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास के पन्नों पर। तो चलते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं आज का इतिहास। आज है 16 जून। 16 जून सन 1606 में सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। सन 1884 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के कोनी द्वीप पर पहला रोलर कोस्टर चालू किया गया, आज ही की तारीख में। सन 1963 में सोवियत संघ की 26 वर्षीय वैलेंटीना तेरेश्कोवा वोस्तोक 6 से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। सन 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई। सन 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। सन 2007 में ही एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया, आज ही की तारीख में। और श्रोता साथियों, आज ही की तारीख में 2008 में उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त मंत्रालयों का एक पैनल पेट्रोलियम ईंधन पर बिक्री कर कटौती पर सहमत हुआ। और श्रोता साथियों, आज की तारीख में कई दिवस के रूप में भी आज की तारीख को मनाया जाता है। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और अब जानते हैं कि आज की तारीख यानी 16 जून को कौन सी हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 16 जून 1944 में निधन हुआ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय का। महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का निधन हुआ आज ही की तारीख में सन 1925 में। भारतीय सिने अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य का निधन हुआ आज ही की तारीख में सन 2021 में। श्रोता साथियों, इतिहास के पन्नों को पलटने का सिलसिला रहेगा आगे भी जारी, पर अभी सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
2: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
3: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
2: और ग्रीन एनर्जी पाएं
3: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
2: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आए ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर काली पुतली चौक मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 8770854830
1: 7581938175।
2: श्रोता जातियों, इतिहास की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं आज जन्मी हस्तियों के बारे में। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक रोहित श्रीवास्तव का जन्म हुआ सन 1976 में। उर्दू के मशहूर शायर अखलाक मोहम्मद खान का जन्म हुआ आज ही की तारीख में सन 1936 में। प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत जन्मे सन 1956 में आज ही की तारीख में। और आज ही की तारीख में 1920 में जन्म हुआ हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार। हिंदी संगीत और सिनेमा का एक ऐसा नाम जिनकी आवाज़ ने कई लोगों की मोहब्बत के गुलिस्तां को बना दिया। एक ऐसे गायक, संगीत निर्माता, निर्देशक और फिल्म निर्माता जिनके गानों से फिल्में हिट हो जाती थीं। हेमंत कुमार ने 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में ऐसा संगीत दिया जिसके कायल आज भी बहुत से संगीत प्रेमी हैं। उन्हें हम हेमंत दा कहकर पुकारते हैं। साथियों, हेमंत दा की आवाज़ और संगीत इतना ज़बरदस्त था कि हर इंसान खुद को उससे जोड़ लेता था। यही वजह थी जो मशहूर संगीतकार सलील चौधरी ने उनके लिए कहा था कि अगर भगवान भी ज़मीन पर अगर गाता तो हेमंत दा की आवाज़ में गाता। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में शानदार संगीत और गानों से बंगाली सिनेमा में ऐसी छाप जोड़ी जिसको कोई दूसरा गायक कभी मिटा नहीं सका। वहीं हिंदी सिनेमा में संगीतकार के तौर पर हेमंत दा की सफलता की शुरुआत फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म नागिन से हुई थी। हेमंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम को उन्होंने इतिहास रच दिया। हेमंत दा के नाम से वे मशहूर हुए और उन्होंने मुख्य तौर पर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में गाने दिए और इनके लिए धुनें तैयार की। इसके अलावा उन्होंने कई और भी भाषाओं में गाने गाए। हेमंत दा ने एक बार ज़रा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना है, अपना दिल तो आवारा, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, भंवरा बड़ा नादान है, जैसे कई शानदार गानों को गाया और कंपोज किया। आइए सुनते हैं हेमंत दा के स्वर में ही ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोता साथियों, हम बात कर रहे थे आज की इतिहास में, तो आज यानी 16 जून सन 1950 को जन्म हुआ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें मिथुनदा के नाम से भी हम सभी जानते हैं, अपनी बहुमुखी भूमिकाओं और विशिष्ट नृत्य शैली के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें एक्शन से भरपूर पात्रों से लेकर मार्मिक नाटकीय भूमिकाएं तक शामिल हैं। साथियों, मिथुन चक्रवर्ती एक छोटी सी शुरुआत करने वाले युवा से लेकर एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बनने तक का सफर उन्होंने तय किया है। आशा और दृढ़ता के प्रतीक, दृढ़ता की भावना के प्रतीक हैं वो, जो ये साबित करती है कि जुनून और समर्पण के साथ कोई भी अपने सपने और महत्वाकांक्षी सपनों को साकार कर सकता है। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें उभरते अभिनेताओं एवं कलाकारों के लिए एक आदर्श बना दिया। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने पर्दे पर एक्शन भी बखूबी निभाया, तो अपने संजीदगी वाले किरदारों से लोगों का दिल भी जीता। मिथुन चक्रवर्ती की एक अलग ही फैन फॉलोइंग रही है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने कई दमदार फिल्मों में भी काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है, और इसके अलावा वे कई टीवी शोज़ में भी जज के तौर पर नज़र आए हैं। आइए सुनते हैं मिथुन दा अभिनीत ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोता साथियों, हमारे जो युवा साथी हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है एक अच्छा रोज़गार पाने का, और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत ही करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि वो अपना मनचाहा रोज़गार पा सकें। तो इसमें उनकी थोड़ी सी मदद हम भी करते हैं आज की रोज़गार सूचना देकर। साथियों, रक्षा उत्पादन विभाग जबलपुर में तकनीशियन के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून सन 2026, और आवेदन करने का पता है द कंट्रोलर, कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, OFV, व्हीकल फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस जबलपुर, पिन कोड 48200948209। पदों से संबंधित, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे श्रोता साथी kirannewsagency.com इस वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। तो श्रोता साथियों, ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। आपसे बातें करने का और भी मन चाहता है, लेकिन अब समय इस बात की इजाज़त हमें नहीं दे रहा है कि हम इसका आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखें। तो चलते चलते हम आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें मिला राकेश वर्मा और प्रदीप येड़े का, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की, और कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ थी मैं, आपके रेडियो दोस्त संगीता। कल एक नए अंक, एक नई आवाज़ के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और स्वीकारिए हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से।

0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी

0: ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और

0: हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब लुत्फ उठाइए सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आइए श्रोता साथियों, आगाज करते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम का जगजीत सिंह के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए पंकज उदास के स्वर में।

पंकज उधास के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। श्रोताओं, आपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग, और इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ हैं हमारी साथी रिजवाना खान।

0: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम सब रंग लेकर आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त रिजवाना खान। आज के मुख्य आकर्षण इस तरह हैं: विश्व रक्तदान दिवस, बदलते मौसम का मानव जीवन पर असर, 21 जून 2026 को योग दिवस और हमारे खास श्रोता से बातचीत। श्रोताओं, 14 जून 2026 को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि आपका दिया हुआ खून किसी को नई जिंदगी दे सकता है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर उमंग बघेल, रक्तकोष अधिकारी, अग्रवाल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर।
0: विश्व रक्तदान दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और इस साल 2026 की विशेष थीम क्या है?
1: देखिए, इस दिन को मनाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, उन स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार जताना जो बिना किसी स्वार्थ के खून देकर लोगों की जान बचाते हैं। दूसरा, लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना। जहाँ तक थीम की बात है तो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन या जिसे WHO कहते हैं, एक नई थीम तय करता है ताकि सुरक्षित रक्तदान की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित

0: किया जा सके। और इस बार की थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड एंड सेव लाइव्स।
1: कौन रक्तदान कर सकता है?
0: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, बशर्ते वो कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, वजन कम से कम 50 किलो से या उससे अधिक होना चाहिए, उसका जो हीमोग्लोबिन है HB होना चाहिए 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस या कैंसर या HIV नहीं होनी चाहिए।
1: लोग दूसरों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या रक्तदान करने से खुद रक्तदाता की सेहत को कोई फायदा होता है?
0: जी बिल्कुल होता है। यह एक बहुत ही बड़ा लोगों में मिथक है कि खून देने से कमजोरी आ जाती है, बल्कि सच्चाई यह है कि रक्तदान करने से बहुत प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि ब्लड किसी का ज्यादा हो रहा है, शरीर में आयरन का मात्रा ज्यादा हो रही है तो वो भी कंट्रोल में रहती है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हो जाता है, शरीर से हानिकारक टॉक्सिन भी बाहर निकल जाते हैं जिससे कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है, और जब आप खून देते हैं तो एक शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, नई कोशिकाएं बनती है तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, और साथ ही साथ रक्तदान के पहले आपका मुफ्त में हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, वजन की जांच होती है तथा अन्य कुछ गंभीर बीमारियां जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस की भी जांच हो जाती है।
1: आज हमें रेडियो पर हमारे कई ग्रामीण और शहरी श्रोता हमें सुन रहे हैं। समाज में आज भी डर है कि खून देने से कमजोरी आएगी या हम बीमार हो जाएंगे, इस डर को आप कैसे दूर करेंगे?
0: देखिए, मैं आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि रक्तदान से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और रक्तदान के दौरान 350 से 450 मिलीलीटर खून लिया जाता है। हमारा खून से जिसे प्लाज्मा कहते हैं की पूर्ति 24 से 48 घंटों में कर लेता है और लाल रक्त कोशिकाएं या RBC कुछ हफ्तों में दोबारा बन जाती है, तो आप रक्तदान के आधे घंटे बाद भी अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकते हैं।
1: एक स्वस्थ व्यक्ति साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है?
0: देखिए, एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने में और एक स्वस्थ महिला हर 4 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती है।
1: चलते चलते आप आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रक्तदान करना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही नेक काम है। एक्सीडेंट, डिलीवरी, कैंसर और भी कई गंभीर बीमारियों से अस्पताल में तड़पते मरीजों के लिए आपका खून एक भगवान का रूप होता है। आप खून देकर उनकी जान बचा सकते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है, इसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, यह सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। इसलिए डरिए मत, आगे आइए और रक्तदान करके किसी के घर का चिराग बुझने से बचाइए। और तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक यूनिट ब्लड से 3 तरह के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे पैक्ड रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट, तो एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए डरिए मत, आगे आइए, क्योंकि रक्त बहाने से रिश्ते टूटते हैं और रक्त देने से रिश्ते जुड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओ, हमारे साथ एक रक्तदाता भी शामिल है जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें ब्लड देने में कोई दिक्कत आई या उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा।
2: मैं हीरालाल चौहान, मैं बालाघाट का ही रहने वाला हूँ। कई बार रक्तदान किया है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है और किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ नहीं होती। बार बार रक्तदान करिए, हर 3 महीने में 4 महीने में अपना रक्त देते रहना चाहिए। उससे क्या है, अपने शरीर में नया खून आता है, नई स्फूर्ति रहती है और इससे बहुत सारी चीज़ों का जैसे BP, शुगर, ये सब चीज़ों का भी लगभग होने के चांसेस कम रहते हैं। और मैंने तो ये सोच के चालू नहीं किया था कि मैं रक्तदान करूँगा तो मुझे ये सब बीमारियाँ नहीं होंगी, पर मैं जैसे जैसे रक्तदान करते गया और मुझे समझ में, आज मेरी उम्र 54 साल हो गई है, फिर भी मुझे आज तक के ना तो BP है, ना शुगर है, ना किसी प्रकार का कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैं तो सभी से यही आग्रह करूँगा कि अपना रक्त जिस किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत पड़ती है देते रहना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, किसी की जान बच जाती है, किसी को समय पे ब्लड मिल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जितनी इच्छा हो देने की उतने बार स्वेच्छा से अपना ब्लड दान कर सकता है, क्योंकि रक्तदान महादान है, यह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाता है।

0: बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। ऐसे में इन परिवर्तनों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं
1: मैं डॉक्टर रवि श्रीवास, होम्योपैथिक विशेषज्ञ।
2: आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी बदलते मौसम में लोगों में कौन सी बीमारियां ज्यादातर घर कर जा रही हैं?
1: जो बारिश के मौसम में आम आदमी को समस्या जो होती है उसके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले हमने ये देखा है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो पुराना गर्मी का मौसम जाने वाला होता है और बारिश आने का समय होता है। तो जब दोनों मौसम का तालमेल जब बैठने का समय आता है तो थोड़ी गर्मी बढ़ती है, थोड़ी ठंड बढ़ती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पनपते हैं, जिनसे बचाव रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अपने जीवन काल में बदलाव लाना पड़ता है। बहुत सारे उपयोगी सामान को हमको छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को हमको उपयोग में लाना होता है। जैसे कि बारिश गिरने से जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे जमीन के अंदर बिलों में रहते हैं, उस स्थान में पानी जाने से वो सारे कीट पतंगे, सर्प, मेंढक, अदर चीज़ें प्रकृति में जमीन के अंदर से बाहर आते हैं। तो वो जहाँ जहाँ उनको सुरक्षा की दृष्टि से वो बाहर निकल के अपने को बचाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे आसपास के एरिया में वो प्रवेश करते हैं, जिसके कारण किसी को सर्पदंश की प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई कीट पतंगे काट देते हैं, किसी के घर में बहुत ज़्यादा कीटों का वास हो जाता है और उसके कारण बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज़ बढ़ती हैं। तो हमको आसपास में सुरक्षा रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। दूसरा, जब बारिश होती है तो उस समय में वाटर इन्फेक्शन डिजीज़ फैलती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को जो टेम्परेचर मिलता है तो वो वापस से पनपना चालू करते हैं। दस्त की प्रॉब्लम, हैजा, फीवर और सर्दी, खांसी, बुखार, ये नए नए प्रकार की जो तकलीफें हैं उनसे हमको सामना करना पड़ता है। बार बार भीग जाने के कारण भी बहुत सारे लोगों को जुकाम की समस्या आ जाती है, स्किन डिजीज़ आ जाती है, ईचिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इससे भी हमको रख रखाव करना होता है ताकि हम दोनों के तालमेल से प्रॉपर रूप से अपने आप को बचा सकें।
2: इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए?
1: जब भी कभी तेज़ बारिश होती है तो हमें बरसाती छाता, अदर चीज़ का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा लगातार भीग जाने से हमको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उनसे बचना हमें अति आवश्यक है। दूसरा, पानी हमको शुद्ध वातावरण ना हो जाए तब तक हमको पानी उबाल कर ही उपयोग में लेना है। और इस समय में जो आने वाली सब्जियां, भाजियां, वस्तुएं और आती हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से साफ करके, धो करके, उबाल करके ही हमको उपयोग में लेना है ताकि हम इन इन्फेक्शन वाली डिजीज से अपने आप को बचा सकें। दूसरा, बारिश के मौसम में कपड़ों में नमी बहुत होती है, क्योंकि प्रॉपर धूप ना निकलने के कारण कपड़े गीले ही रह जाते हैं और वो सूख नहीं पाने से फंगस वहाँ डेवलप होता है। तो हमें उसको इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, अदर व्यवस्था के द्वारा या मशीन में द्वारा कपड़े को ड्राई करके उनको उपयोग करना चाहिए ताकि गीले कपड़ों से होने वाली बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादातर बारिश में इन्फेक्शन स्किन का ज़्यादा होता है, उस समय अपने आप को सूखा और सुरक्षित रखना हमें अति आवश्यक है।
2: इस समय ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसा क्यों?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये सभी लोगों को बहुत समझने सूझने का समय है। जो भी अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके आसपास के वायु प्रदूषण के कारण, दूसरा घरों में नमी आ जाने के कारण उनके घर का जो वातावरण है वो नमी वाला हो जाता है। और अस्थमेटिक जो मरीज होते हैं उनके फेफड़े के अंदर नमी जो होती है वो उनका दुश्मन होता है। तो ये फंगल वाली नमी अगर उसके बॉडी में लगातार बनी रहे, फेफड़े में जो है सूजन आने लगती है और वो लंबे समय तक फेफड़े की तकलीफ से, सांस की प्रॉब्लम से, खांसी, दमा, ये सब तकलीफ बढ़ती है। इसके साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर की भी समस्या आने लगती है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए विशेष रखरखाव बहुत ज़रूरी है। घर को साफ़ सुथरा और नमी से बचाने के लिए हमको सूखापन वहाँ रखना जरूरी है। और जो भी बारिश का पानी हमारे आंगन में और घर के अंदर प्रवेश करता है तो हमें बारिश आने से पहले ही अपने घर की पूरी मरम्मत करानी चाहिए और जहाँ जहाँ पानी जमा होता है उस स्थान से भी हमको छुटकारा पाना चाहिए। साथ में ऐसे बहुत सारे कीट पतंगे, मच्छर हमारे पास पानी स्टोर होने से, बारिश के पानी स्टोर होने से जो पनप जाते हैं, जिससे मलेरिया और नाना प्रकार के डेंगू और बुखार का जो हम सामना करते हैं, इन सब से बचने के लिए भी हमको अपने आसपास पानी को स्टोर होने नहीं देना है ताकि वो हमारे लिए कोई बीमारी का कारण सामना करने का हमको ना करना पड़े। मैं यही बोलना चाहूँगा कि कि बारिश आने से 15-20 दिन पहले से ही हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। जो अनाज हरी सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, अगर वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं तो हमें सूखी सब्जियों का उपयोग बारिश भर करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन डिजीज से अपने आप को बचा सकें। पानी हमेशा उबाल के पीना है और जितनी बाहर की जो उपयोगी वस्तु हैं उनको सोच समझ के उपयोग करना है और जितने

ये फास्ट फूड वगैरह रहते हैं और खान पान की चीज़ें जो फ्रीजर में या बहुत लंबे समय से रेडीमेड मटेरियल आते हैं, उनसे बारिश में हमको अपने आप को बचाना चाहिए ताकि कोई प्रकार के डिजीज़ हमारे बॉडी में प्रवेश ना करें।

0: श्रोतो, हम 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो आइए इसी पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमें।
1: प्रिय साथियों और श्रोताओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। मैं योग गुरु भूमिका मदनकर, आज मुझे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे ये केवल एक दिन ही नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति और मानव कल्याण का संदेश देने वाला एक वैश्विक अभियान है। योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं,

0: कई हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों और मुनियों के माध्यम से पूरे विश्व को इनकी तरफ से हमें संदेश दिया गया है। यह योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, जीवन में संतुलन स्थापित करना, मन शरीर और आत्मा को जोड़ना। आज योग की महत्ता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में इसको अपने दिल से हृदय से अपनाया गया है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव को पूरे विश्व में अनेक देशों का पुरजोर समर्थन मिला और इस समर्थन के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तब से हर वर्ष विश्व भर में करोड़ों लोग इस दिन को एक साथ योगाभ्यास करते हैं और योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति पूरे विश्व में जागरूकता फैलाते हैं। इस वर्ष 4 जून से 8 जून 2026 बीच अहमदाबाद गुजरात में वर्ल्ड योगासन दिवस मनाया गया है, जिसमें कि 79 देशों ने भाग लिया है। 522 एथलीट थे इसमें और भारत को इसमें 114 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 102 गोल्ड हैं, 9 इसमें सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ऐसे टोटल 114 मेडल्स को जीतकर भारत विश्व चैंपियन बना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। प्रिय साथियों, जिस तरीके से आज के युग में विज्ञान और तकनीक ने हमारे इस जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन उन सुविधाओं के चलते अनेक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ गई हैं। लोग घंटों घंटों मोबाइल और टीवी, लैपटॉप पर और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इस चलते शारीरिक गतिविधियां भी बहुत कम हो गई हैं और ज़्यादातर लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। इस सब के कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इस तरीके की ढेरों समस्याएं तेज़ी से सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में योग हम सबके लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय के रूप में सामने आया है। रेगुलर रूप से योग का अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को यह बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। इस रक्त का संचार बेहतर होता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। योग हमें स्वस्थ और ऊर्जावान सक्रिय बनाए रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाता है। अधिकांशतः लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, सकारात्मक सोच को विकसित करता है। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली योग विशेष रूप से लाभदायक, क्योंकि इससे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। योग हमें अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाता है। नियमित अभ्यास व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। इससे क्रोध भी कम होता है, धैर्य भी बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। यह एक और महत्वपूर्ण लाभ इसका यह भी है कि हमें प्रकृति के या एनवायरनमेंट के करीब लाता है। योग हमें सादगी, संतुलन और संयम का भी संदेश देता है। सीखने को मिलता है कि जीवन में वास्तविक सुख केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं है, बल्कि मानसिक संतोष और आंतरिक शांति से मिलता है। कोविड महामारी के दौरान भी योग की उपयोगिता पूरे दुनिया में विश्व ने महसूस की। योग और प्राणायाम से लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योग ने भूमिका निभाई है। इससे लोगों को सकारात्मकता और आत्मबल का उनके अंदर विकास हुआ है। आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। यदि युवा स्वस्थ होंगे तभी राष्ट्र मजबूत और प्रगतिशील बनेगा। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना ही चाहिए। प्रतिदिन अगर हम केवल 20 से 30 मिनट भी योग करते हैं तो भी हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं भी योग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अंत में मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि योग केवल व्यायाम ही नहीं है, यह शरीर शांत मन और सफल जीवन की एक कुंजी है। आइए हम सभी अपनी दिनचर्या में योग को अपना हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में हम सभी अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव। 9 दशकों से आकाशवाणी देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का संदेश पहुंचा रही है। आवाजों का कारवा चलता रहा, हर दिल से दिल का रिश्ता बनता रहा। आज हमारे साथ हैं हमारे खास श्रोता। सबरंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: प्यारे दोस्तों, मैं विजय बागरीचा, आकाशवाणी बालाघाट का एक सुधी श्रोता, पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये 90 वर्षों से अनवरत सेवा करते चले आ रहे हैं।

देश की और संगीत प्रमुख समाचार और सभी प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रमों में सहभागिता रही है। आकाशवाणी की उपलब्धियों का पिटारा है ये आकाशवाणी के पास में है। मैं विगत कई वर्षों से आकाशवाणी बालाघाट सुनते आ रहा हूँ। आकाशवाणी के प्यारे दोस्तों, आपने मैंने सभी ने एक ही चीज सुनी है, जब आकाशवाणी शुरू होता है सुप्रभात से, उसमें एक सिग्नेचर ट्यून बजती है जो मेरे दिल में और दिमाग में बस गई है, जो हमेशा मुझे निरंतर कार्य करने की इच्छा शक्ति देती है और दिन का उजाला सराबोर हो जाता है, भर जाता है, दिल में खुशियां भर देती है। सिग्नेचर ट्यून वाल्टर काफमैन की बनाई हुई है। सिग्नेचर ट्यून 1936 में बनी थी जो आज तक चल रही है और ये हमें सतत चलते रहने की प्रेरणा देती है। ये ट्यून आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपनी ओर से पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ और यही ये परिवार चलता रहे और यही समा बंधता रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं एक प्यारा सा गीत आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सुनिए मेरी पसंद का ये गीत

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मिलते रहेंगे आवाजों के इस सफर में, जुड़ते रहेंगे दिलों के इस नगर में, जब तक है साथ आपका यूं ही बना रहेगा आकाशवाणी का ये प्यारा कारवां। तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रिजवाना खान को, नमस्कार। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग, जिसे लेकर आपके साथ थी हमारी साथी रिजवाना खान। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूज़िक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना। ओम शांति ओम फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शो

0: लौट आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली।

गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी। सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।

0: ये भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जनकल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जनकल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत बीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं, इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय आईटीआई रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण

संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसार
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए श्रोताओं, आगाज करते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का बादशाह फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। स्वर अभिजीत और अलका याग्निक के हैं।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ।

शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना दिल लगी फिल्म का गीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों से सजा खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से, और इस खूबसूरत से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी

0: ये अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-5559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं।

0: और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
0: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
0: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
0: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
0: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
0: क्या?
3: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
0: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
0: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4
0: मेरी तरफ देखो
5: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
5: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
5: यही

0: बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: जॉनसी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉनसी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉनसी,

0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की। सू
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई।

0: अपनी चित्रकारी से एक माँ
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
2: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
0: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
0: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी,
3: जरा वो

0: खिड़की खोल दे। मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ, हाँ। मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ।
4: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
4: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
2: ओह,
3: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
3: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
3: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है।

0: जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस,
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

सातमा मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से तेरी फुरकत में मैं

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने

0: कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग, और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाएं। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।
1: हसीना से

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ वो भी पढ़कर।

वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिए का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में, इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट

0: जरूर लेके जाएं, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना
1: हाँ,
0: खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि
0: हाँ
1: दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर
0: जी
1: हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और
0: बिल्कुल
1: ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
0: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती हैं। और जितना हम किताबों से जान जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज़्यादा, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत ख़राब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: अच्छा लगेगा, खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि
0: हाँ
1: हम पढ़ें,
0: जी
1: कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें,
0: बिल्कुल,
1: जीवनी
0: और
1: पढ़ें।
0: उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या
1: हाँ
0: आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें,
1: बिल्कुल
0: देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस
0: जी
1: उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो
0: जी
1: चलिए बताइए, आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं?
0: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजेय बना देती है। अजेय मतलब ये, आप अगर देखिए मन की जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन
0: जब
1: को
0: बिल्कुल
1: सशक्त बनाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: सखियां।
0: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है, तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं, या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार
0: तो
1: क्या होता है आरती,
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भैया, आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती
0: बिल्कुल
1: हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल
1: आ
0: सुहावने
1: हा हा हा ये तो
0: कि
1: होता है।
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है, या कितना अच्छा काम
1: इसके
0: कर रहा
1: मजे
0: है। हाँ,
1: हैं।
0: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
1: बिल्कुल
0: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी
0: तो
1: जिंदगी में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे
0: जी
1: उसका मुकाबला किया, इन सब
0: जी
1: बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
1: ये भी
0: और
1: बताएं कि इनकी जिंदगी में
0: हाँ
1: दूर के
0: ये
1: ढोल
0: किस
1: सुहावने
0: तरीके से
1: हुए
0: इस चीज
1: क्या?
0: को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात
1: अरे
0: करेंगे,
1: वाह, क्या बात
0: जो
1: है।
0: हैं डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना
1: हाँ, बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है हर
0: जो कि
1: समय।
0: विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है,
0: जी,
1: बातें हल्की
0: क्योंकि
1: फुल्की
0: इस
1: कही
0: विषय
1: है
0: पे अक्सर
1: और विषय
0: तकरार
1: रखा है
0: हो जाती है।
1: घरेलू बजट। बाप रे,
0: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है
1: आहा, ये तो
0: पूरे घर में,
1: बड़ा
0: मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए जो पता है, जो गृहिणियां हैं ना
0: जी
1: वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखें और अभी हम सुन लेते हैं
0: एक
1: गीत।
0: गीत जी

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी आईएफएडी ने की थी।
1: जी। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी। और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: खुशी होती कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने और उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या

0: हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है ना,
1: हाँ
0: या उसकी तरह क्यों नहीं, जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, अब कोई जरूरी
1: बिल्कुल
0: नहीं है आपको पता हो उसके ऊपर
1: हाँ,
0: के बारे
1: आपने
0: में।
1: उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना,
0: बिल्कुल
1: आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह
0: जी
1: से हंसना बोलना, और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना

0: आते हैं।
1: बिल्कुल, इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं हटा किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले परेशान करने वाले है ना बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना भारती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र खोल दिया और आपने एकदम
0: से हो गया। आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभालकर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
0: अपनी
1: मत
0: सफाई देना,
1: उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम

0: थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है, और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके लिए खड़ी,
1: वो सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
0: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आपने। क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया।
1: बिल्कुल है ना, एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब उनके
1: चेहरे पे कैसे भाव आते हैं।

0: बहुत
1: हाँ ये
0: जरूरी।
1: आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: जी
1: आपने जब तक हाँ भरी तब तक
0: हाँ
1: आप बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने
0: बिल्कुल।
1: व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत
0: और
1: बनाइए।
0: इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया करते देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और
1: बिल्कुल
0: जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए,
1: हाँ
0: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत आ, आ, कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा
0: बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
1: हाँ
0: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस बात का हमें ध्यान रख के
1: सोच
0: बोलना
1: समझ
0: चाहिए।
1: के बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में
0: जी
1: लगा पाते और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी ना कहें जो बाद में
0: जी
1: आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे
0: अच्छा।
1: नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में
0: जब
1: आ
0: हम,
1: जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि अब मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
1: हाँ फिर
0: क्योंकि
1: मैं
0: ये
1: हर दिन,
0: चाटुकारिता में आ
1: हाँ ये
0: जाता है।
1: चाटुकारिता में आता है,
0: जी
1: और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने
0: बिल्कुल
1: वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: जी, अपनी
1: और
0: खूबी अपनी खामी हर
1: हाँ
0: इंसान को पता होती है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: होती
0: है ना।
1: है, और
0: तो
1: मजबूत मन ही वो
0: देखिए
1: जादू है
0: जी
1: जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता
0: बिल्कुल
1: है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।
0: जी
1: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे,
1: जैसा मैंने आज
0: मंदाकिनी
1: उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ
0: जी
1: करने वाली है, पर
0: नहीं नहीं
1: आरती ने आज
0: आप
1: तारीफ
0: नहीं,
1: नहीं
0: मैं
1: की।
0: तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को,
1: हाँ
0: मैं एकदम सही तरीके से आपकी कि जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती
1: तो
0: हूँ।
1: मैं आगे उम्मीद रखती
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ की।
1: तो चलिए,
0: जी
1: आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें
0: एक
1: एक
0: गीत
1: प्यारा सा गीत
0: सुनाए
1: सुनवा दें।
0: जी।

0: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
0: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
0: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल। और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यवसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल। उनकी संस्था ने न केवल भारत में

0: बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये।
1: और
0: आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर
0: बहुत,
1: बात करें हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है
0: बिल्कुल
1: चाय की तरह।
0: जी,
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसे देख के तो देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना,
0: हाँ
1: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही
0: जी
1: वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल। और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: वो
0: आता
1: सारी
0: है ना उस
1: प्रक्रिया
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण
0: जी
1: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर
0: बिल्कुल
1: चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा
0: जी,
1: है
0: लेकिन
1: ना,
0: जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है
0: सा
1: कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि
0: जी
1: सच्चाई क्या है।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती, परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
0: रलियामणा
1: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
0: सुहाना।
1: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने
0: कहा कि पहाड़ों को
1: जो
0: दूर से जब
1: हाँ
0: हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते
1: जी
0: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कान फोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
1: जी
0: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे ही
0: अच्छे
1: सही
0: हैं।
1: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती हैं, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता हैं हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने इस
0: बिल्कुल,
1: चीज को
0: लेकिन
1: समझा।
0: यहां मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी
1: अच्छी
0: ही
1: लगेंगी। ऐसा नहीं है
0: लगेंगी।
1: कि आपको निराशा हाथ लगी या कुछ,
0: हाँ,
1: आप
0: इस
1: बिल्कुल
0: बात
1: हमसे
0: का
1: मिलिए तो हम आपको
0: वैसे
1: और
0: ही
1: बहुत अच्छी
0: लगेंगे
1: तरह से आपसे बात
0: जैसे
1: करेंगे।
0: हम अभी आपको लग रहे
1: जी
0: हैं। ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियाँ और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार

0: बाहर नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
1: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
1: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
0: हाँ।
1: उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
0: बिल्कुल
1: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
0: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
1: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल,
0: वो
1: बिल्कुल, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह, अरे मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले, बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते हैं मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर

0: एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया. वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए. वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा. और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत. ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर.
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनवाना चाहेंगे.
0: जरूर.

0: वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया दर्द लिया याद आ रही है फिल्म, वो वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हो, तो चुपके से

0: आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
1: आपको कहा
0: हाँ हाँ क्यों नहीं,
1: किस फिल्म
0: सबको
1: में?
0: कहते थे।
1: किस फिल्म में?
0: दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
1: कोई
0: थी।
1: खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि
0: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए, याद करने डाल रहा हूँ। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए।
0: आदमी
1: हाँ
0: का
1: जी,
0: वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, वो तो
0: या
1: लास्ट लास्ट का
0: समथिंग,
1: क्लाइमेक्स का
0: हाँ
1: गाना।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होकर टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज़, वो बहुत अच्छा था।

0: अभिषेक जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: हाँ, बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था, तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी। और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था।

0: और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर
1: हाँ
0: जयकिशन साहब का संगीत
1: हाँ
0: था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके? तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं।
1: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट. उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है.
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ
1: बिल्कुल
0: उसी तरह की वो
1: सही
0: फिल्म
1: सही.
0: है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनवाए।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है.

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत, तो गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती?
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह

0: रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉर्ट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉर्ट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
2: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफ़ा, जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा। जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए, रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं, बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए दो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
2: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोकम।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
2: मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम
0: नहीं,
2: करना?
0: आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन
2: कोई
0: एक्टर।
2: यादगार घटना है उनके साथ में?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम,
2: जी,
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे, जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ, अपने सीन्स सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
2: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं, तो वो कहते हैं कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतने ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें वो उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं

0: तो कैमरा पीछे जाता था तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
1: वही गाना सुनते हैं।
0: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।
2: वो शाम कुछ

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है
1: हाँ,
0: उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई कभी?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं तो 20 साल बाद, नहीं कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज़ हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंत ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज़ नॉट ए रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मज़े की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था, तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा, वो मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ हिम के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा। किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
1: कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात,

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: श्रोताओं नमस्कार, युववाणी कार्यक्रम का एक नया अंक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपका रेडियो दोस्त धीरज। दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत लेकर के आए हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी के एग्जाम में झंडे गाड़ चुके हैं अपने, और इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की है। तो आज हम इनसे इसी संबंध में परिचर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी सफलता के क्या राज हैं। तो चलिए बिना देर की हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने नए गेस्ट से। तो नरेंद्र बघेले जी, आपका आकाशवाणी बालाघाट में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, मेरा नाम नरेंद्र बघेल है
0: जी।
1: मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक सुंदर से पहाड़ी गांव उकवा का निवासी हूं, जो अपने मैगनीज उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है जी सर। मैंने
0: अच्छा, आपका जो चयन हुआ है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में
1: जी सर,
0: और इसमें आपकी रैंक कौन सी है?
1: सर, मेरा चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
0: और तो दोस्तों, ये जो है पूरे मध्य प्रदेश के, कह सकते हैं कि मतलब टॉप फोर में अपना स्थान सुरक्षित किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो नरेंद्र बघेल जी।
1: धन्यवाद सर।
0: और मैं चाहूँगा कि आपने किस तरह से तैयारी की है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। सबसे पहले आप अपने स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए
1: जी सर। जी सर, मैंने सर अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव पर ही रहकर के पूरी की है, उकवा पर। उकवा का जो शासकीय विद्यालय रहा है, मैंने वहीं से सर 11वीं 12वीं पास की है। मेरा विषय विज्ञान था सर, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, जिसका सह विषय केमिस्ट्री और फिजिक्स रहा था सर
0: जी। जी,
1: उस समय सर मेरा मार्गदर्शन श्री जयपुर सुबारिक जी ने वहाँ पर किया था, और उन्होंने मुझे बताया था आगे करियर को लेकर के, सिविल सर्विस को लेकर के, और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के बारे।
0: अच्छा, आपने वो ग्रेजुएशन जो है स्नातक की डिग्री कहाँ से ली थी?
1: जी सर, सर उसके बाद की मैंने जो उच्च शिक्षा है बालाघाट पर रह करके, यहाँ के जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय विद्यालय से रह करके मैंने बीएससी किया था, जिसमें मेरा विषय भूगर्भ शास्त्र था। इसके बाद सर मैंने प्राइवेट से एमए भूगोल से किया हुआ था
0: जी,
1: और मेरा नेट और जेआरएफ भूगोल और इतिहास दोनों।
0: अच्छा, आपने जेआरएफ कब पास की?
1: सर मैंने जेआरएफ 2023-24 में पास की।
0: दो, यानी कि दोनों साल आपने निकाला है?
1: नहीं सर, मेरा 2024 पे जेआरएफ था।
0: ओके, चलिए। तो श्रोताओं, हमारे साथ जो नरेंद्र बघेल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जीआरएफ भी निकाला है और नीट भी निकाला है। तो नीट आप कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किए थे?
1: सर जो यूजीसी नीट की परीक्षा है सर, जब मैं प्राइवेट से एमए कर रहा था 2021 में सर, मैं फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल हो चुका था, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही पहली बार मेरा नीट निकल चुका था सर।
0: वो कौन से साल में आप दिए?
1: 2021 सर।
0: 2021 में आपने नीट दिया
1: सर पहले?
0: अच्छा, नीट देने के बाद फिर आपका कहाँ से मन हुआ कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और उस जो है वो प्रोफेसर टीचिंग के शिक्षा के क्षेत्र में जाना है?
1: जी सर, सर विषय को जब हम पढ़ते रहते थे तो अक्सर करके हम विद्यार्थियों से चर्चा करते रहते थे, हमारे क्लासमेट से चर्चा करते रहते थे, तो ये होता रहता था कि हम किसी टॉपिक को कोई दूसरा व्यक्ति तैयार कर रहा है, किसी टॉपिक को हम तैयार कर रहे हैं, तो आपस में जब चर्चा करते थे तो हंसी मजाक पर सर वो बोल देते थे कि आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते, और आपको तो प्रोफेसर होना चाहिए। मजाक मजाक में भी हंसकर हम बोल देते थे कि जब हम प्रोफेसर बनेंगे तब हम बिल्कुल बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कब वो सपना बन गया और कब वो हकीकत हो गया, ईश्वर का आशीर्वाद था सर वो सारी प्रक्रिया का।
0: चलिए, हम आगे भी बात करेंगे आपसे इस मुद्दे पे, और श्रोताओं आप फिलहाल इस कार्यक्रम में बने रहिए।

0: क्योंकि आज हम आपके सामने ज्ञान का पिटारा लेकर के आए हैं। एक सफल चयनित अभ्यर्थी हमारे पास हैं MPPSC के, और इनसे जानेंगे इनके गुण। लेकिन यहाँ पे हम रुकते हैं मनोरंजन के लिए। अच्छा बताइए, कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगे यदि अगर कुछ है तो?
1: सर अभी 2-3 दिनों में मेरा रिजल्ट आया है सर, तो मैं चाहता हूँ सर कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
0: क्या बात है। तो श्रोताओं सुनते हैं इनकी पसंद का यह गीत।

0: हाँ तो श्रोताओ, हम बात कर रहे थे अभी अपने एक नए अभ्यर्थी से, बघेल जी से। तो बघेल जी, सबसे पहले अब आप बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो छात्र जो हैं वो जानना चाहेंगे।
1: जी सर, जी सर मेरे पिताजी लगभग 35 वर्ष हो गए, वो कुआ माइन पे जो अंडरग्राउंड है सर, उस पे लेबर का काम कर रहे हैं सर, वहाँ पर कर्मचारी हैं और लगभग उनका भी 36वां वर्ष चल रहा है सर।
0: देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता लोग या जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं, वो कुछ लोग अपनी नाकामियों का रोना भी रोते हैं कि मतलब मैं उस पृष्ठभूमि से नहीं आता कि तैयारी कर पाऊँ, लेकिन आपकी जो मतलब हौसला है, आपका जो डेडिकेशन मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हमारे श्रोताओं तक, हमारे जितने भी छात्र जो हैं वो सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अच्छा, आपने फिर तैयारी कैसे शुरू की इसकी?
1: जी सर, जैसे ही मैंने MA विषय से भूगोल से जब किया सर, तो मैंने फिर अपने प्रोफेसरों से बात की आगे करियर को लेकर के। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है, उन्होंने इस बारे में मुझे बताया। तो फिर मैंने सोचा कि आगे पढ़ने और पढ़ाने, शिक्षा से बड़ा सर मुझे लगता है कि कोई भी दान नहीं होता सर, और कोई भी कर्म नहीं होता सर।
0: एक कहावत भी है बघेल जी की, जिंदगी का सबसे मतलब आसान काम है तो पढ़ना, और सबसे कठिन काम है तो पढ़ना।
1: जी सर,
0: डिपेंड ये उस बंदे पे करता है, उस इंसान पे करता है कि उसको वो किस तरह से लेता है।
1: जी सर।
0: अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपका जो MPPSC की वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था आपका, वो आपने कैसे दिया, और इसका सेंटर वगैरह कहाँ था, कौन कौन से चरण होते हैं, वो भी हमारे छात्र जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे।
1: जी सर, सर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को फॉर्म भरने के लिए ही सबसे पहले एक मिनिमम योग्यता होती है
0: जी,
1: कि आपको राज्य पर सेट की परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर पर नेट की परीक्षा निकालनी होती है। सौभाग्य से सर,
0: यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट।
1: यस सर,
0: है ना?
1: जी सर, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
0: ओके,
1: नेट। सौभाग्य से सर 2021 में ही मेरा नेट निकल चुका था, आगे फिर JRF भी हुआ सर, और आगे फिर दो विषयों से सर, मैं बताना चाहूंगा दो विषयों से मेरा नेट है सर, हिस्ट्री से भी और ज्योग्राफी से भी। तो सर जब मैं ज्योग्राफी से नेट हुआ तो फिर मैं एलिजिबल हो चुका था। इसकी सर फिर दो प्रक्रिया होती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए परीक्षा करती है, मुख्य परीक्षा जिसके दो पार्ट होते हैं। पेपर एक सामान्य ज्ञान का परीक्षा होता है, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जनजाति और कला संबंध से संबंधित पेपर होता है। जो दूसरा पेपर होता है वो शुद्ध विषय का पेपर होता है, जिसमें करीब 150 क्वेश्चन विषय से होते हैं।
0: आपके कौन से मतलब जो सब्जेक्ट थे, विषय कौन से थे आपके?
1: जी सर,
0: सर आपने कौन सा विषय चुना था?
1: सर मैंने भूगोल का विषय,
0: भूगोल चुना था, यानी कि आपके भूगोल में रुचि रही।
1: जी सर।
0: हाँ, तो आपने इसकी तैयारी कैसे की?
1: जी सर, सर शुरुआत से जब मैं MA कर रहा था सर, तो मेरे ध्यान पे था, क्योंकि लाइब्रेरी पे पुस्तक रखी रहती थी और वो बहुत अच्छे लेखकों की पुस्तक रहती थी सर, उनको पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता था और वो शब्द वाली भी मुझे बड़ी पसंद आती थी सर।
0: यदि अगर हमारे कोई छात्र आपसे चाहेंगे कि कौन से तरीके वो बुक से पढ़ें, तो आप उनको कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं कौन से?
1: जी सर, मुझे लगता है सर कि सबसे अच्छी पुस्तकें हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियों पर होती है, जो बहुत प्रखर विद्यमान जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी पुस्तक होती है। उदाहरण के तौर पर सर भूगोल पर माजिद हुसैन साहब की पुस्तकें हैं, फिर रविंद्र सिंह की पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें सर।
0: ये तो मेंस की बात आ गई बंधु, मैं चाहूँगा कि अगर कोई छात्र के मन में यह समस्या हो कि वो प्री कैसे निकालें, जो प्राथमिक परीक्षा है, प्री एग्जाम जो है वो कैसे निकालें, इसके लिए कैसे तैयारी करें, उनके मन में डर बना हुआ रहता है, क्योंकि परीक्षा और ये कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपटीशन ये जो है वो बड़ा टफ हो गया है आजकल, तो वो कैसे तैयारी करें, अगर आपके पास कुछ है विचार तो वो आप हमारे श्रोताओं तक साझा कर सकते हैं।
1: सर अगर इस परीक्षा की बात करें, या इसको छोड़कर कोई और भी पुस्तक अगर हम परीक्षा की बात करें, तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थियों को उसका पाठ्यक्रम डाउनलोड करना चाहिए। पाठ्यक्रम को वो 4 बार 5 बार पढ़े, मुझे लगता है सर एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जिसे पाठ्यक्रम पूरा ही याद

0: होता है,
1: हाँ,
0: उसमें कितने यूनिट हैं,
1: सिलेबस क्या है,
0: कितने टॉपिक हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक विद्यार्थी का सबसे पहला जो धर्म होता है उसका सर जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है सर उसका एक तो पाठ्यक्रम, दूसरा सर उसके जो पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न थे। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो पाठ्यक्रम होता है इससे अच्छा मार्गदर्शन कुछ नहीं हो सकता,
1: कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे।
0: जो PYQ होते हैं सर वो ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि जब आप मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़े हैं और आप सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इसका सबसे अच्छा है कि आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन देख लीजिए।
1: और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा उसमें, सतत प्रयास, ठीक है, रिजर्वांस, यानी कि आप एक बार 10 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको निकाल लीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि MPPSC क्या पूछ रही है, क्वेश्चन किस खंड से कहां से आते हैं और किस ढंग के प्रश्न जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अच्छा, और कुछ आगे है तो वो बता सकते हैं आप।
0: जी सर, सर जैसे मार्केट में कई सारे, पहले तो आप थ्योरिटी की बहुत अच्छी पुस्तक पढ़िए, कोशिश करें कि वो भारत की सबसे अच्छे लेखकों की पुस्तक हो, क्योंकि उसमें तथ्य जानकारी है, बड़ी सटीक होती है और जब पेपर भी बनते हैं तो उन्हीं पुस्तकों का रेफरेंस लेकर के बनता है। तो आप जब भी पुस्तक पढ़ें रेफरेंस बुक पढ़ें, साथ ही साथ सर प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। जैसे घटना चक्र हो गया, यूथ कॉम्पिटिशन की कुछ पुस्तकें आती है जिसमें 10,000-15,000 क्वेश्चन बैंक होते हैं सर, तो मुझे लगता है कि सर प्रयास, वो हम बोलते भी हैं सर कि प्रयास जो होता है कोई भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है सर, तो प्रयास उसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, जब आपने ये परीक्षा दी 2024 में,
0: जी सर,
1: और इसका रिजल्ट फिर कब आया, प्री इसका कब हुआ था 2024 में?
0: इसके जो इसमें सर एक ही परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, इसके बाद इंटरव्यू होता है। मेरा परीक्षा सर 1 जून 2025 में सर इसकी मुख्य परीक्षा थी।
1: कहाँ आपने दिया था
0: सर इसे? मैंने इंदौर पे सेंटर पे,
1: इंदौर पे सेंटर पे दिया था। और आपका इंटरव्यू जो है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था?
0: जी सर, सर 27 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था
1: जी,
0: और यह केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ही होता है।
1: हाँ, ये इंदौर में ही होता है जो।
0: जी सर,
1: तो आपका जो ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फाइनल रिजल्ट आया वो कब आया, कब पब्लिश हुआ?
0: सर वो 12 तारीख के दिन, अभी हाल ही पे,
1: ये मतलब 12 मई,
0: 12 जून सर,
1: 12 जून।
0: जी सर,
1: तो 12 जून को जब रिजल्ट आया तो तब फिर कैसा फील हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा त्यौहार उसका रिजल्ट ही होता है।
0: जी सर,
1: क्या प्रतिक्रिया थी आपकी, क्या प्रतिक्रिया थी आपके दोस्तों की, क्या प्रतिक्रिया थी और आपके जो माता पिताजी हैं, जो बंधु बांधव हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: सर जैसे रिजल्ट आया उस समय सर मैं मंदिर के पास बैठा हुआ था, क्योंकि 7-8 बजे का समय रहता है, उस समय मंदिर पे रहता हूँ। तो सर जैसे मैंने रिजल्ट देखा और मुझे सर्च करने की आवश्यकता नहीं, शुरुआत में ही मेरा नाम था, मेरे चौथे रैंक पे नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो पहले तो मैं स्तब्ध रह गया सर, मेरे आंखों पे आंसू आने शुरू हो गए। फिर मैंने कुछ अपने दोस्त लोगों को भेजा कि कन्फर्म करो ये, क्योंकि उस समय सर सब कुछ धुंधला सा लगता है और वो सारा सब कुछ सामने आ जाता है सर, आपका जो परिश्रम होता है, मेहनत होती है, संघर्ष होता है। तो 10 मिनट तो आग से लगातार आंसू रहे, वो संघर्ष सामने से गुजरा और फिर अंततः सर सब लोगों ने कंफर्म किया कि आप ही हो नरेंद्र बघेल जिसने 4th रैंक प्राप्त किया है।
1: मतलब श्रोताओं, आप जिन्हें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से, वो टॉपर हैं, टॉप 4 रैंकर है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। और तो और कुछ बताइए, आपके गुरु जनों की क्या प्रतिक्रिया थी, फिर गांव का माहौल क्या था, कैसा कैसा लग रहा था लोगों को?
0: जी सर,
1: क्योंकि उस समय आप तो हीरो थे
0: सर,
1: भाई सबके लिए।
0: सर गांव पे शुरू से सर बड़ा सपोर्ट रहे, शुरू से जो भी मुझे जानता रहे गांव पे, मेरे शिक्षक रहे सर श्री जेम्स बारिक सर जी, बालाघाट में सर श्री नितेश साहू सर जी, श्री बलराम यादव सर जी, तो ये बड़े खुश थे सर। और मैं जैसे ही कल आया गाँव पर तो भव्य मेरा स्वागत किया गया, शोभा यात्रा की गई और गाँव के तमाम महिलाएं थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बड़े खुश थे सर। गांव में बड़ा खुशी का माहौल है कि एक छोटे से गांव पे सर कोई व्यक्ति ने रैंक लिया है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आप जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कठिन तैयारी कर रहे हैं अपने? हाँ
0: जी सर, सर मुझे लगता है सबसे पहले तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, अपने प्रति ईमानदार होना, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, अपने मार्गदर्शकों के प्रति आस्था रखना, अपनी पुस्तकों के प्रति आस्था रखना। क्योंकि सर हम क्या कार्य करते हैं केवल हमको पता होता है, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि माता पिता और सब लोग बड़ा विश्वास करते हैं आपके ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी निष्ठा से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। और हम अक्सर सुनते हैं कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, लेकिन सर रिजल्ट एक दिन ज़रूर आता है।
1: आप अगर कठिन मेहनत करेंगे तभी।
0: यस सर।
1: हाँ, जी सर, क्योंकि रिजल्ट के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, एक प्रिजर्वांस हो गया, सतत प्रयास,

0: दूसरा चीज क्या है कि हार्डवर्क, ठीक है ना, तीसरा लक, ठीक है ना। हाँ, और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं
1: सर। एक चीज होती है सर, जब सिलेक्शन होता है तो हर कोई सोचता है कि क्या सबकी जर्नी ऐसे रही थी, क्योंकि कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई असफलताओं से प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैंने भी पहली बार पे सफलता प्राप्त नहीं की थी, मेरी भी जर्नी उतनी संघर्ष भरी रही थी। मैंने भी परीक्षा दिया था, पहली परीक्षा में सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण से मेरा चयन नहीं हो पाया था, कुछ एक दो क्वेश्चन से मैं रुक गया था। लेकिन सर मैंने खुद को समझाया। शिव मंगल से सुमन जी की सर एक पंक्ति है सर, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की मैं भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही और वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। रघुताना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बस बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
0: क्या बात है। अब मैं यहाँ मतलब आपको रोकना चाहूंगा और मैं हम बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं एक गीत।
1: जी सर।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।

0: केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: हाँ तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अच्छा बघेल जी, अब आप बताइए कि ये जो दो चरण के जो परीक्षा होते हैं, इसकी तैयारी आपने कैसे की और हमारे श्रोताओं को क्या पढ़ना चाहिए?
2: जी सर, सर संक्षिप्त में कहे तो पेपर नंबर एक जो होता है वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का होता है। कोशिश करिए कि सामान्य ज्ञान की कोई भी लोकल जो पब्लिकेशन है जो मध्य प्रदेश में होती है, एमपी की कोई भी पुस्तक, आप उससे उनको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वो विषय से संबंधित होता है, भूगोल से संबंधित। कोशिश करिए कि किसी लेखक की पुस्तक को पढ़ें, जैसे भूगोल पे मैंने
1: स्तरीय बुक होनी चाहिए।
2: जी सर, जैसे भूगोल को मैंने समिंदर सिंह जी से पढ़ा था, माजिद हुसैन सर से पढ़ा था, एसडी मौर्य सर से पढ़ा था। कार्टोग्राफी की भारत में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जेपी शर्मा जी की पुस्तक, उनसे मैंने पढ़ा था। तो जो रेफरेंस पुस्तक होते हैं, जो कॉलेजों पर आयोगों पर रेफरेंस यूज करते हैं।
1: अच्छा, एक सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, लोगों को साक्षात्कार से डर लगता
2: जी
1: है
2: सर, जी
1: कि कैसे वहाँ हम फेस करेंगे, किस तरह के कपड़े पहन कर जाएं, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में बताइए। आपने कैसे तैयारी किया था, आप अपने बारे में बताइए ताकि लोगों का डर भ्रम दूर हो।
2: सर, मुझे लगता है जितना सरल हो सकता है हमें उतना सरल रहना चाहिए। मैं एक सामान्य से शर्ट पैंट में ही वहाँ पर इंटरव्यू देने गया हुआ था। अगर आपने कोट पहना हुआ है, आपको प्रैक्टिस है या आपको टाई की प्रैक्टिस है, तो फिर बिल्कुल आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, आप ये बताइए कि आपने तैयारी कहाँ से की, घर पर रह के?
2: सर, मैं बालाघाट पे रहकर ही तैयारी किया था, लेकिन सर क्या होता है कि सेंटर बड़े निश्चित होते हैं, 5 से 7 शहरी होते हैं जहाँ सेंटर होते हैं। तो सर मैं परीक्षा देने के लिए इंदौर पे था, और साक्षात्कार के पहले मैं इंदौर चला गया था सर, क्योंकि वातावरण में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो
1: चलिए, और श्रोताओं देखिए, इनसे ये भी समझ में आया है कि लोग भी सोचते हैं कि नहीं, बड़े शहरों में जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, पढ़ने के लिए कहीं भी है कि आप किसी भी कोने में रह करके पढ़ सकते हैं।
2: जी सर,
1: तो यहाँ पे रुकेंगे और एक गाना सुनना चाहते हैं, चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में।
2: जी सर,

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:31 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म ओम शांति ओम से। आवाज़ है के की।

0: हाँ तो बघेल जी, चलते चलते अब जो है हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जी सर, बस इतने सर कि ईमानदार रहिए, खूब मेहनत करिए, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी विफल नहीं होती, तो खूब मेहनत करिए।
0: तो श्रोताओं, अब जो है घड़ी की सुइयां जो है इशारा कर रही है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो आप बने रहिए आकाशवाणी बालाघाट के साथ, फिर मिलेंगे किसी नए अंक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ओम शांति ओम फिल्म का गीत। अब आइए सुनते हैं राजनीति फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं प्रीतम और मोहित चौहान की, संगीत है प्रीतम का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गीत, ये सुनते हैं फिल्म संघर्ष से, आवाज है अलका याग्निक की।
1: तेरी एक छुवन से
0: साथ में है सोनू निगम।

0: 林林扎拉凯。Good evening, Valakai.
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के इस नए अंक में। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मानव जीवन के आधार यानी विश्वास की। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता। परिवार, मित्रता, समाज और कार्यस्थल, हर जगह विश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम किसी व्यक्ति की बातों और कार्यों पर भरोसा करते हैं तो उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास बनाने में लंबा समय लगता है, लेकिन उसे टूटने में केवल एक क्षण लगता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी, सत्य और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह दूसरों का विश्वास जीत लेता है। आत्मविश्वास भी विश्वास का एक महत्वपूर्ण रूप है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो तो वह कठिन परिस्थितियों का सामना साहसपूर्वक कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास की भावना को बनाए रखना चाहिए और दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही संबंध मजबूत होते हैं और यह एक स्वस्थ समाज की नींव है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबरा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।

श्रोताओं, मानव जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी नींव सत्य पर आधारित होती है और झूठ इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। झूठ वह कथन है जो जानबूझकर सत्य को छिपाकर या बदलकर बोला जाता है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच विश्वास को कमजोर कर सकता है। सामान्यतः लोग भय, स्वार्थ, लाभ प्राप्त करने या किसी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कभी कभी किसी की भावनाओं को ठेस से बचाने के लिए बोला गया सफ़ेद झूठ उचित हो सकता है, लेकिन बार बार झूठ बोलने की आदत व्यक्ति की विश्वसनीयता को नष्ट कर देती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा स्थापित करना बहुत कठिन होता है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए साहस और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। फिर भी दीर्घकाल में सत्यनिष्ठ व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती है और रिश्तों में पारदर्शिता तथा सम्मान बनाए रखती है। झूठ से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके परिणाम अक्सर नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमें ईमानदारी और सत्य का मार्ग अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मजबूत समाज की नींव विश्वास और सत्य पर ही टिकी होती है। श्रोताओं, इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस
1: PM सूर्य।

0: पर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आएं ग्रीन सोलर ग्रीन फ्यूचर काली पुतली चौक मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 8770854830
1: 7581938175।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट यहीं समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के साथ मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: एफएम बैंड पर प्रसारण है आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम सुगम संगीत में ये सुनते हैं पहली गजल आशा भोसले की आवाज में।
2: पापा के बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट सारेगामा कारवा।

0: वो जो बैठी,
1: कौन
0: वो जो बैठी है? वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठी।
1: देखो बड़े भैया की नजर कहाँ चली गई, आशक होने लगा है। क्या है?
0: वो जो बैठी,
1: कौन
0: वो? नहीं वो जो उनसे परे बैठी। कोई जाके उनको कह दो।
1: क्या कहूँ?
0: कोई जाके उनको कह दो

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यही समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के साथ मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7:05 पर हम रिले करेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चौपाल ये कार्यक्रम होगा 7:21 पर। किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:30 पर होगा कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। रात 8:45 पर हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9 बजे।

9:15 पर हम रिले करेंगे स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:05 होने को हैं। अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को कर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

0: खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मानसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:21 होने को हैं। अब सुनिए किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन रहे समस्त किसान भाइयों को अपने किसान मित्र तूफान सिंह हरिन खेड़े
1: और गेंदलाल कारे का नमस्कार।
0: नमस्कार गेंदलाल भाई, जैसा कि खेतीबाड़ी की बात करें तो हमारे किसान भाइयों का पूरा ध्यान अभी अपने खेतों पर है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपनी खरीफ की फसलों के लिए अभी से तैयारी कर लें तो आगामी समय में उन्हें बहुत अच्छी सुविधा हो।
1: देखिए तूफान भैया कि अभी बीच में जो बारिश हुई उससे ऐसा लग रहा था कि बारिश अब लगभग प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन मौसम पुनः परिवर्तित हो गया और शायद कुछ विलंब भी हो सकता है और इस वर्ष ऐसे भी वर्षा की कम संभावना है।

0: हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है, लेकिन जो कृषि कार्य है निरंतर हमारे किसान साथी चाहे वर्षा हो अथवा ना हो लेकिन अपने कार्य से पीछे नहीं हटता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और किसान का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई समस्या जो भी हो लेकिन उसको अपने समय पे काम करना है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साथ बात करें खरीफ फसल में, अभी कुछ किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन है, उनका मन हो रहा है कि भाई क्यों ना हम जो फसल है, फसल के लिए बीज है, बीज की व्यवस्था है, और हम खार की तैयारी कैसे करें।
0: बिल्कुल, और जिनके पास में स्वयं के साधन है उन हमारे किसान साथियों ने धान की नर्सरी की बुआई कर चुके हैं, फिर भी अभी ऐसे बहुत सारे किसान साथी है जो नहरों के ऊपर आश्रित हैं या मौसम पर आश्रित है, तो अभी उन्होंने खार की बुआई नहीं की। और आप देख रहे हैं कि बाजारों में इन दिनों जो बीज है वह बहुत अधिकतम दामों में किसान साथियों को विक्रय किया जा रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसान साथी अपने घर के ही बीज का उपयोग करें और उससे बढ़िया उपचारित करे नमक के 17% के घोल में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जो बाजार में मूल्य है बीजों का बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ एक हमारे किसान भाई है, उनने हमें बताया कि 3 किलो का बीज बोले हमने 1600 रुपये में लिखा है। सोचिए उसको कितना महंगा बीज लेना पड़ा है। अगर यह जो समस्या है 1600 रुपये बहुत होते हैं किसान भाई
0: बिल्कुल
1: के लिए।
0: और अभी आप देख रहे हैं कि जो रबी सीजन की जो धान है हमारे किसान साथियों ने 1700-1750 रुपये कुंटल बेचे हैं।
1: देखिए
0: और आप देखिए कि 3 किलो 1600 रुपये।
1: इस तरह से जो बातें आ रही है और समस्याएं दिख रही है और किसान को बहुत महंगा बीज मिल रहा है, तो किसान भाई ही अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो उसके पास खुद के साधन हो या आगामी समय में फसलों के लिए निरंतर रूप से देखभाल हो और वो खुद स्वयं बीज अगर बना ले, तो क्या हमें यह सब समस्याएं हैं अधिक अनावश्यक जो खर्चा हो रहा है इसको हम बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमारे किसान साथियों में इससे क्या होता है कि खेती की लागत बढ़ती है और लागत बढ़ने से क्या होता है कि किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता है, इसीलिए हम किसान साथियों को यही सलाह देना चाहेंगे कि वो घर के बीच का उपयोग करें। अब किस प्रकार से उपचारित करना है हम आगे कार्यक्रम में बताएंगे, फिलहाल चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

और तूफान भैया क्या मधुर यह किसान साथियों के लिए गीत था दुर्गा देवदास और साथियों के स्वर में। और इससे ऐसा लगा कि सही में जो हमारे किसान साथी हैं ये हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तूफान भाई अब हम चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम किसानवाड़ी की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान भाइयों, पुनः स्वागत है आपका अपने किसानवाणी कार्यक्रम में, और मैं आपके साथ तूफान सिंह हरिन खेड़े
2: और मैं साथ में गेंदलाल कारे। स्वीकार करें हम दोनों किसान मित्रों का नमस्कार।
1: जैसा कि किसान भाई, अभी वर्तमान की हम बात करें और हमारी बात चल ही रही थी कि किसानों के बीच जो बातें चल रही है, कुछ एक दूसरे के विचार चल रहे हैं, कुछ एक दूसरे के अनुभव चल रहे हैं कि अब खार की तैयारी कैसे करें और किस समय में कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
2: तूफान भैया, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों ने अपने खेत की बढ़िया दो सर तीन सर जुताई कर लेना चाहिए, और जिस स्थान में अपने को धान की नर्सरी डालना है, जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में खार बोलते हैं, तो उसको बढ़िया मलमला बना लेना चाहिए, और ढेले जो हैं उसके छोटे बेर के आकार के भी अगर से रहें तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद में अपना जो धान है, जो हमारे किसान साथी चाहे मार्केट का धान लाते हैं या जैसे घर का धान है, तो उसको उपचारित करें। किस प्रकार से करें, जैसे कि बात आई थी अभी 17% नमक के घोल के लिए, तो इसके लिए किसान साथी अपने घर का जो धान का जो बीज होता है उसको बढ़िया साफ फटक ले और एक स्थान में उन्हें सुरक्षित करें, और उसके बाद में उसको अगर सीधी उपचारित करना है तो एक ड्रम में पानी लीजिए और उसमें अंडे के आकार का एक आलू डालिए या अंडा डालिए, और उसमें नमक तब तक के डालते रहिए जब तक कि आलू या अंडा ऊपर ना उठ उफलना चालू कर दे। फिर उसके बाद में जैसी वो उफलता है उस अंडे को या आलू को बाहर निकाल दे और उसमें जो धान अपना घर का जो फटका फूटका है वहाँ पे मिला दे और बड़े हाथ से घुमा दे, तो उसमें क्या होता है कि जितना अदरा बदरा खकरा रोगा मिर्गा जो भी धान है वह उफल जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह से हमें अपने बीजों का बीजोपचार करना चाहिए। गेंदल भाई, बात यह भी आती है, पहले हमारे पूर्वज हम जब छोटे थे तब देखने में आता था, हमारा दादा जरूर बोलता था कि बेटा 8 या 10 दाना वहां के धान निकाल लो, जहां अपने बीज रखे हैं उसकी पोषडी बना के रखते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उसे नमी वाले स्थान में रखते थे या किसी मटके में, जो मिट्टी के मटके होते थे उनमें डाल देते थे।
1: बिल्कुल,
2: ये तो खैर ये हमारे पूर्वज जो लोग थे का भी बहुत अच्छा अनुभव था, और उसमें अगर से दी 10 दाने, अगर 10 दाने में अगर से दी 1 दाने में अंकुरण नहीं आया तो उसमें समझ लिया।

0: कि 100 में 10% धान में अंकुरण नहीं आने वाला। रही बात तूफान भाई की धान को उपचारित करने के लिए, तो फिर उसको क्या हाथ से घुमाते जाए और जितना भी रोगग्रस्त जो धान है वो ऊपर उफलना चालू हो जाएगा, फिर उसे छन्नी के माध्यम से उसे अलग कर दे, फिर घुमाते जाइए, जितना भी हल्का जो बीज होगा वह ऊपर उफलते जाएगा, उसको अलग कर दीजिए। और जो बीज उस टब में या ड्रम में आपने जिसमें भी डाले जो नीचे बैठा है उसको अलग निकाल लें और उसे साफ दूसरे सादे पानी से धुल लें, और धुलने के बाद उसको छाया में लाएं और गौमूत्र या बायोस्टीन या जिससे भी आप उपचारित करना है कर सकते हैं, उसके बाद में खेत में बोए कर सकते हैं। और ये आपका एकदम शुद्ध बीज होगा और कम लागत में कम में बम बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहे गिंदल भाई। देखिए किसान भाइयों, हमारे किसान बंधु जो हमारे बीच में हैं और हमारे गिंदल भाई ने जो अपना अनुभव बताया, यह बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव है और अपने घर में यह काम हम आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे बीजोपचार करके अपन फसलों का उत्पादन के साथों साथ खेत की सुदृढ़ समृद्धि और हमारे साथ विकास भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही साथ किसान भाइयों का एक और तजुर्बा होता है कि वह चाहते हैं कि बीज जैसे मार्केट से लाते हैं, मैंने अक्सर देखा है मार्केट से लाया, बढ़िया जमाजम पोतड़ी में पैकिंग में रहता है और उसको खोल के तक भी नहीं देखते कि घर सही में बीज ये ठीक है या
0: नहीं।
1: कम से कम घर में ले आइए, देख लीजिए उसमें सही में कहीं कमी बिसी तो नहीं है।
0: बिल्कुल, उसकी गुणवत्ता तो जांच के जांच लेना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि अभी हम देख रहे हैं कि कृषि विभाग के माध्यम से भी जो बाजारों में जो बीज जो बिक रहा है, तो हमारे जैसे कि मालवीय सर ने बताया उप संचालक ने कि जहाँ कहीं भी अगर से आपको ऐसा कुछ लगता है तो कहना चाहिए निम्न स्तर, कुछ लोग व्यापार की दृष्टि से निम्न स्तर के भी बीज किसानों के साथ में धोखाधड़ी कर बेच रहे, इसीलिए उसको देख ले। और अगर यदि आप मार्केट से बीज खरीदते हैं तो जिस दुकान से आप खरीदते हैं उसकी रसीद पर्ची और से ले।
1: बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यह जो बातें थी बहुत छोटी छोटी सुनने में जरूर लगती है लेकिन बहुत दमदार और हमारे लिए
0: असरदार
1: साबित होती है। देखिए हम बातचीत जानकारियां तो बिल्कुल दे ही रहे हैं लेकिन हमारे बीच हमारे किसान भाइयों का एक और इंतजार होता है, भेंट वार्ता।
0: बिल्कुल।
1: और भेंट वार्ता के लिए हम बात करें तो किसान भाइयों का हम यह जो उनका जो विचार है, सोच है, इंतजार है, इसको भी हम पूरा करेंगे।
0: तूफान भाई, तो हम देख रहे हैं कि आजकल अभी हमारे जो कृषक महिला बहन है अभी खेतों पर हम देख रहे हैं कि भरी धूप में मेड़ों पर अरहर पोपट मूंग लगा रही है, और आज के समय में कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी कहीं से कम नहीं है कृषि कार्य करने में। और इसी से संबंधित आज हमारे साथ में एक महिला कृषक है, श्रीमती लक्ष्मी कटरे, आप है ग्राम साले विकासखंड लालबरस से, तो उनके इस भेंटवार्ता को सुनते हैं।
2: जैसे कि आज का जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जहां पुरुष कृषि के क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन वहां कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हैं। इसी क्रम में आज हम एक कृषक महिला बहन से मिलते हैं जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कटरे है, मैं ग्राम साले की रहने वाली हूँ, विकासखंड लालबर्रा है, जिला बालाघाट।
2: लक्ष्मी कटरे जी, आपका हमारे इस किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम जो चर्चा का विषय है, हमारे आज का चर्चा का जो विषय है कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके पास में कृषि योग्य कितनी भूमि है?
3: हमारी तो मात्र 15 करोड़ की जमीन है, हम उसमें पूरे परिवार सहित काम करते हैं और हम लोग उसमें परा वरा भी लगाने जाते हैं। कम से कम ज्यादा बनिहार वनिहार तो नहीं रखते, फिर भी हम लोग यानी 2-4 लोग जैसे बनिहार रख लेते हैं और हम लोग पूरा यानी दोनों भाई साथ में मिलके खेती करते हैं। हम लोग हम दो देवरानी जिठानी ने हम दो देवरानी जिठानी डेली परहा लगाते हैं और हमारे दो बच्चे हैं, वो लोग क्या है स्कूल के टाइम तक खेत में काम वाम करने लगते हैं और फिर उसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। हमारी दो बेटियां हैं, वो भी खेत में 10-11 बजे तक काम करती, फिर वो भी स्कूल चल जाती। हम 4 लोग हैं जो खेत में दिन भर काम करते हैं।
2: आपके पास में ये जो कृषि योग्य जो भूमि है जिसमें आप कृषि का कार्य करते हैं, धान की फसल लेते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं और अनेकों प्रकार की मेड़ों पर अरहर तुवल पोपट मूंग की भी फसल लेते हैं, आप हमें ये बताइए कि कृषि के क्षेत्र में कृषि को और विकसित करने के लिए बहुत सारे व्यवसाय भी आते हैं, चाहे मछली पालन का हो, पशुपालन का हो, पशुपालन के अंतर्गत में बकरी पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, ये सब कार्य आते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपकी क्या भूमिका रहती है, पशुओं के संदर्भ में हम बात करें तो आपके पास में कितने पशुधन है?
3: हमारे यहाँ

0: तीन भैंसी हैं जो दूध देती हैं।
1: हुँ,
0: हम लोग जैसे कभी जेंट्स नहीं भी रहे, हम लोगों को भैंसी को यानी खाना पीना खिला सकते हैं, यानी गेहूं का कुटार हम उसे यानी फुला लेते, पहले धो लेते हैं, फिर
1: हाँ
0: उसके साथ मैदा में मिक्स करके यानी सीमेंट की फरसी में पहले हम उसको मिला लेते हैं, उसमें फिर मैदा डालते हैं, चुन्नी मैदा जो भी है उस प्रकार हम डल्ला तैयार कर लेते हैं, भैंसी के सामने मढ़ देते हैं और फिर भैंसी भी दूह लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और जैसे जेंट्स लोग नहीं भी रहे तो हम घर पे भैंसी का पूरा ध्यान रख लेते हैं।
1: यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि आज के जमाने में महिलाएं भी कहीं से कहीं तक के पीछे नहीं है कृषि के कार्य में। आपके पास में कितनी बकरी है?
0: हमारे यहाँ 6 बकरी हैं, तो हम लोग कम से कम साल में बकरियां, 6 बकरी हैं तो कम से कम वो साल में 2 बार बच्चे देती बकरियां, 6 6 महीने में। तो हम लोग बकरी की भी की यानी ये कर लेते
1: देख रहे
0: काम,
1: कर लेते हैं।
0: हाँ देख रेख कर लेते हैं बकरियों का भी। जैसे हम लोग बकरी कभी 2 जन गई, कभी 3 जन गई, तो उसे फिर भैंसी का भी दूध पिला देते हैं टोटी द्वारा। और जैसे फिर बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, कम से कम एक बकरा तो कम से कम 8 9 हजार का बिक जाता है, और जैसे दो रहे तो कभी सस्ते कभी महंगे बिकते रहते हैं जी। तो उस प्रकार से हम लोग यानी बकरी में भी हम लोग अच्छे लाभ ले लेते हैं हम
1: हाँ,
0: लोग।
1: कुल मिला के हम ये बोले कि अगर से दी किसान को आर्थिक रूप से अगर से दी समृद्ध होना है तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए। साल भर में आप कितने के बकरा बकरी बेच लेते?
0: साल भर में हम कम से कम हो 60 70 हजार तक की आय ले सकते हैं बकरा बकरी के उत्पन्न से, और दूध के उत्पादन से भी हमारा घर का खर्च चल जाता है, जो हमारा धान का पैसा है वो बचित रह जाता है, और जैसे बकरी का भी पैसा से हमारा पूरा घर का प्रपंच चल जाता है, शादी है विवाह है कपड़े हैं लत्ते हैं वो सब हमारा बाहर के बाहर खर्चा दूध के और बकरी पालन के पैसे से निकल जाता है।
1: बकरी पालते हैं तो बकरी को आप किस प्रकार का आहार देते हैं खाने में?
0: हम लोग जैसे सुबह चरा लेते, बच्चे लोग 10 11 बजे तक चरा लेते, और फिर जैसे दिन भर रहा तो हम लोग घर ही पे उनको डंगाल वंगाल ला के दे देते हैं, और फिर जैसे डंगाल नहीं मिली कभी तो हम लोग गेहूं के कुटार में भी उसे मैदा मिला के चुनी मिला के उसको डल्ला खिला देते हैं बकरी को भी, तो बकरी भी वो डल्ला खा लेती है, मैदा चुनी कुटार का, गेहूं का कुटार, जैसे सीजन रहा तो तुअल का कुटार, ये सभी प्रकार के डल्ले खा लेती बकरी, कभी डंगाल नहीं मिली तो बकरी भी मस्त पेट भर लेती वो कुटारों से।
1: आपको रेडियो के माध्यम से और हमारे अन्य कृषक बहनें जो सुन रही है उनको भी आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं बस तय कहूंगी सभी बहना लोग से कि जैसे खेती का काम करते हुए अपने पशुपालन पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, और उस पे भी करो तो उससे भी अपना घर का खर्च निकल जाता है। मैं सभी महिला लोग से कह सकती हूँ कि कृषि के साथ साथ अपना पशुपालन बकरी पालन इसमें भी आप ध्यान दे सकते हो, अपना घर का खर्च निकल जाएगा। जैसे फिर अपन थोड़े थोड़े पैसे के लिए, हर पैसे के लिए अपन जेंट्स लोग के पास जाते हैं ना, तो अपन लोग को जेंट्स लोग के पास नहीं जाना पड़ेगा, जैसे अपन खुद ही मेहनत करो और अपन खुद ही अपना खर्चा अपन करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी महिला लोग से, और बस यही अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग यही अपना काम करें और बकरी पालन और पशुपालन में अतीक ध्यान दें।
1: श्रीमती लक्ष्मी कटरे जी, आपने हमारे किसान साथियों को, किसान बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: होती है। साथियों, इसी क्रम में जैसे कृषि से जुड़े अनेकों व्यवसाय हैं, अपन बात करें पशुपालन की, मछली पालन की, मुर्गी पालन की। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो नगदी आय का माध्यम होता है। साथियों, इसी क्रम में हम आज मछली पालन पर ही बात करेंगे और हमारे बीच हमारे एक मछली पालन करने वाले व्यवसायी हमारे साथ मौजूद है। हम मिलते हैं इनसे। जी, हम जाने आपका परिचय।
1: भाई साहब, मैं राजा सांडिल लालवरा बालाघाट से।
0: जी सांडिल जी, जैसा कि हम की लोग रोजगार चाहते हैं, तो आप इस व्यवसाय को चुनने का या इस व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: जी, बहुत बढ़िया व्यवसाय है ये। इसमें किसान बहुत अच्छा अपना रोजगार उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि ये एक तो नकदी का व्यवसाय है। इसमें आप 6 माह के अंदर में लगभग मछली जो आप डाल रहे हैं, जुलाई के महीने में डलती है मछली इसमें, तो लगभग आप अगर 2 हेक्टेयर का तालाब है तो आप 3 पाव से लेके 1 किलो के आसपास तक के का इसमें आप कर सकते हैं। और अब बढ़िया अच्छा इसमें अपना ग्रोथ करके मछली बढ़िया आपको एक अच्छा व्यवसाय उपलब्ध करवा सकती।
0: जैसे कि मछली पालन यह व्यवसाय है, बहुत अच्छा है, लगभग सभी लोग इससे परिचित भी हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए ऐसे संसाधनों की बात करें या ऐसे कौन से जगह का चयन करें, इस बारे में बताएं।
1: जी, क्या है ये भाई साहब, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास में पानी की व्यवस्था। अगर आपके पास खुद की अगर निजी जमीन है तो आपके पास पानी की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इसको 12 महीने जब आप पाल रहे हैं तो इसमें हर समय आपको पानी का लेवल बना रहना चाहिए। कम से कम 5 से 6 फीट के आसपास आपके पास में पानी रहना चाहिए, तो ही आप इसका व्यवसाय कर सकते हैं।
0: पानी है ही, हम बात करें तो मछलियों में ऐसी कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा?
1: क्या मैं तो बताना चाहूंगा अपने मत्स्य पालन साथियों को कि उनमें कुछ संक्रमण बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें उसके गलफड़ों में एक दाने टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ तो पूछ गलने वाला एक मतलब बीमारी होती है, उसमें ब्लैक स्पॉट बोला जाता है उसको। तो उसमें क्या होता है कि ये किसान भाई अपने खेतों मतलब तालाबों में एक तो चूने का छिड़काव करें, और चूने से अगर ना हो रहा है तो आजकल तरह तरह की मेडिसिनें मिल रही हैं, जिसमें बहुत से लोग बैठे हैं बताने के हिसाब से कि आप उसको उसका छिड़काव करें, उससे आप अपनी मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
0: अच्छा, ग्रोथ अच्छा हो, मछलियां बिल्कुल स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मार्केटिंग व्यवस्था यहाँ की जो है उस हिसाब से यहाँ कौन सी मछलियों का ज्यादा पालन होता है?
1: जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पालन होता है भाई साहब तो वो रोहू करके एक मछली होती है और कतला, ये 2 चीजों का बहुत अच्छा पालन है, और इसमें मार्केट में भी अधिक रेट मिल जाता है इसका। और ये लगभग 1 साल में, ये 12 महीने में लगभग ये 1100-1200-1300 ग्राम के आसपास में बैठ जाती है। ये किसान भाई इसका भी पालन कर सकते हैं। फिर एक नीचे जो मतलब कीचड़ों को खाती है वो कामन कार एक आती है, वो सिपनेस बोला जाता है उसको, उसका भी पालन कर सकते हैं। जी
0: अच्छा, तो मछलियों का जो व्यवसाय है, पालन है, बीज की व्यवस्था कैसी क्या रहती, कहाँ से उपलब्ध होता है
1: बीज की व्यवस्था? भाई साहब, यहाँ पे क्या है, मुरझड़ में गवर्नमेंट फार्म है जो उसमें आसानी से किसान भाइयों को वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। जैसे सरकारी बीज की मछलियाँ हो गई, ग्रासकार हो गई, कामन कार हो गई, उसमें सिल्वर हो गई, उसपे एक आजकल उसका पंगास का चलन बहुत ज्यादा जो पशु, तो उससे भी किसान भाई बहुत अच्छे से अपना उसको पालन करके बहुत अच्छे से अपना मतलब व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या दाने से पाला जाता है उसको, लेकिन अगर अपन देसी मछली की बात करें और मतलब बिना दाने के अगर पालने की बात करें, तो उसमें ग्रासकार एक होगी जो घास को खा जाती है, दूसरा एक रोहू हो गया, एक कतला हो गया, नीचे जो कीचड़ रहता है उसके लिए कामन कार हो गई। तो इन मछलियों का किसान भाई अपने बढ़िया बिना लागत से कहना चाहिए कि तालाब में बिना कुछ डाले वो बढ़िया आसानी से पाल सकता है। और अगर किसान इससे और अच्छा करना चाहता है तो फिर तरह तरह के दाने हैं खिला के पाल सकता है किसान अपना। मतलब बहुत सी चीजें आ रही हैं आज के समय, बहुत से मिनरल्स आ रहे हैं, बहुत से दाने आ रहे हैं, जिससे किसान भाई बहुत अच्छे से मछली का ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ ला सकते हैं मछली।
0: मछली की बात करें, मछली बहुत अच्छा अपना पौष्टिक आहार माना जाता है हमारे।

0: स्वास्थ्य के लिए यह बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारा प्रयास है, हमारे जो मछली पालन करने वाले भाई हैं उनका भी प्रयास है कि हम तमाम मछली का पालन बहुत अच्छे से करें और अच्छे से अच्छा खाद्यान्न हम लोगों को दे सकें। शैंडली जी, जैसे अक्सर देखा जाता है कि बालाघाट जिले की हम बात करें, यहाँ की जलवायु, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की मिट्टी, इसके हिसाब से क्या सभी प्रकार की मछलियों का पालन यहाँ किया जा सकता है?
1: जी हाँ भाई, सभी प्रकार की मछलियों का पालन किया जा सकता है। अधिकतर क्या है, बालाघाट का किसान जो है मछली को पालन तो कर ही रहा है, तो कर सकता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे सभी प्रकार की मछलियों का पालन पोषण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये मछली नहीं पलेगी या वो पलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रख रखाव अच्छा है, आपका तालाब अगर साफ सुथरा है, आप बराबर नियमित समय में भोजन दे रहे हैं, नियमित में देख रेख कर रहे हैं सारी चीजें, तो आप किसी भी मछली का आप व्यापार यहाँ से कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। जहां तक मैं कर रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। मैं एक छोटे से एक हेक्टर के तालाब में लगभग 20 से 25 क्विंटल के आसपास मछली मैं निकाल लेता हूँ।
0: प्रयास है आपका बिल्कुल जारी है। अच्छा, मछलियों को जो दाना देने की बात आती है, दाना किस समय में देना बहुत अच्छा होता है?
1: क्या है भाई साहब, मछली का अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो दाना उसके मतलब वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे जो मछली अगर आपकी 1 किलो है तो उसमें 1% 2% के हिसाब से आपको उसको दाना देना होता है। जैसे जितना मछली अगर आपने स्टार्टिंग में जैसे आप काम कर रहे हैं तो मछली का जो संपूर्ण वेट है उसके हिसाब से 2% के हिसाब से आपको वेट देना होता है भाई साहब। और जैसे जैसे मछली बढ़ते जाएगी तो आपका जो परसेंटेज, जो खिलाने का जो परसेंटेज है वो कम होते चले जाता है।
0: और इसको अमल कर हम अपने व्यवसाय को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। मछली पालन पर बहुत अच्छे अपने अनुभव जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा है?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर अब तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।

हाथ जोड़ करके भैया ध्यान मग्न हो करके द्रौपदी कथा द्रौपदी स्वयंवर के कथा राजा जन्मेजय को सुनाने लगे रागी। कहने लगे बेटा सरमेश है माता कुंती और पांचों भाई पांडव विप्र के भेष में ब्राह्मण के भेष में रह करके भिक्षा मांग मांग करके अपने जीवन गुजारने लगे चारों दिशा में भिक्षा मांगे और पांचों भाई पांडव भिक्षा में जो कुछ भी लाभ मिले ओला घर में आके अपन गुजारा चलावे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश गरुड़ जी को बुला करके कहने लगे ओ राम राम

0: बता दे गरुड़ जी
1: आओ।
0: कि पांचाल नगर में राजा द्रौपदी रहे पन कन्या द्रौपदी के स्वयंवर रचा है।
1: अच्छा।
0: और वो स्वयंवर में भैया मत्स्य भेदन के है।
1: आओ।
0: जो राजा जे भी राजकुमार जे भी वीर छत्री वो मत्स्य भेदन करी ओकरे संग में रानी द्रौपदी के स्वयंवर होही। और ये मत्स्य भेदन अर्जुन के सिवाय कोई दूसरा नहीं करन सके। और जेल न द्रौपदी बिहाव करी वो हर कौरव वंश के नाश करही ना। कन्हैया के आज्ञा मान करके गरुड़ जी जब चले तो पांचों भाई पांडव ब्राह्मण के भेष में धौम्य पंडित के साथ में भैया पांचाल नगर के लिए ही निकले थे। रास्ते में जब गरुड़ जी को मिले तो पांडव हरि गुणगान करते चले तो गरुड़ जी मन में सोचने लगे वाह वाह वाह ये हरि गुणगान करैया तो सिर्फ पांडव ही लगते ये पांडव के छोड़े दूसरा को

0: गरुड़ जी को पहचान करके पांचों भाई पांडव है वो भी प्रणाम करने लगे। और द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के जब खबर पूछे रागी तो गरुड़ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे पांडव, मैं मुरली वाले के भेजे अनुसार ही मैं खबरिया बन के आया हूँ। जल्दी कहो गरुड़ जी की भगवान कन्हैया हमर बर का खबर भेजे है।
1: अच्छा,
0: हमर बर का संदेश भेजे है। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे पांडव।
2: किसान भाइयों, इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का सफर अब यहीं पर समाप्त होता है। तो हमें दे अनुमति स्वीकारे अपने किसान साथी तूफान सिंह हरिणखेड़े
3: और गेंदलाल कारे का नमस्कार।
0: पधारो।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बागी 2 से। आवाज़ है आतिफ असलम की।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लकी अली की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम पॉप म्यूजिक यहीं समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के साथ मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को है, अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरुण।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक

0: की करेंगी। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ

0: लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका

0: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
1: Well, thanks, Ankit, for those updates.

0: So, Anshu Joshi, thank you so much for being with us.
1: Thank you so much, Rajesh ji. Namaskar.
0: Namaskar.
2: You were listening to a discussion on G7 Summit key issues and priorities.
3: इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शो

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950

के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्म।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं। कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

दिल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगें, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगी।

दिल को समझाया बगैर उनके जीना सीख ले, पर जिद्दी दिल कहां मानने वाला, वो उन्हीं के पहलू में जा बैठा। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना, मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कनें गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है, लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है।

तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, विचरती रहती है।

0: खूबसूरत।
1: उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ब्लैक मेल के इस फिल्म के साथ। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत संगीत है राजेंद्र किशन का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जाता हूँ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं चंबल की कसम फिल्म का ये गीत। संगीत है खय्याम का और बोल है साहिर लुधियानवी के।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, बोल है इंदिवर के और फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। संगीत है मजरूह सुल्तानपुरी का और फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: आता है पसीना।
1: बापरी,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सफ़र।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म दो बदन से। आवाज़ है आशा भोसले की, संगीत है रवि का और बोल हैं शकील बदायूनी के।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, रात के 11 बजने को हैं। अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि

0: बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of